पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजी दिलबर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के रोनी मंडल गवर्न रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर मैं लेके आता हूं सांसों की रूहानियत 2.0 शो को। हम बात करते हैं कुछ इश्क की, इश्क के रंग की, इश्क में होने वाली जो मासूमियत है उसकी बात करते हैं। जिसे इश्क होता है वही जानता है कि दर्द होता है या खुशियां मिलती है या फिर मीठा सा दर्द होता है। पर वो कहते हैं ना, इंसान ने अगर दिल को अपने सीने में छिपाए रखा है तो इस दिल की धड़कन जो सुन लेता है वही आपका इश्क होता है। और ये प्रेम भरी बातें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये चाहता है कि हर दिल में एक प्यार भरी नमकीन सी मुस्कान हो। और ये इश्क की किस्से जो सही जीवन में सच्चे से हो, और ये किस्से ऐसा नहीं कि बस कहानी है, पर किसी ना किसी ने इसे जिया भी है। और ऐसी जिंदगानी के अनुभव को हम शेयर करते हैं क्योंकि चाहे जितनी भी नफरतें इस जहान में फैली हुई हैं, उस सब के बीच प्यार तो पनपता है। आज हम ऐसे ही किसी एक और नए किस्से की बात करने वाले हैं। उसे कहानी के स्वरूप में मैं अपने शब्दों में आपको सुनाऊंगा। याद रखिएगा, ये कहानी किसी ना किसी ने जी हुई है। ये हो सकता है कि जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, जिससे आप इस कहानी को महसूस कर रहे हैं, वो मेरे हो, पर इस कहानी के पीछे जो कथा बीज है वो किसी की जिंदगी में सही से अपने जीवन में उतारा हुआ एक अनुभव है। और ऐसे ही प्यार के किस्सों को बांटना मेरा भी काम है। तो आज की कहानी की शुरुआत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो पालनपुर।

ये दुनिया बिना शब्दों के जैसे फीकी सी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि नमक के बिना कोई भी खाना हमें अच्छा नहीं लगता। उसे आप खाने की रेसिपी के अंदर पकाकर उसका यूज करें या फिर बाहर

से छिड़क कर, पर नमकीन जो एहसास होता है वो चाहिए। वैसे ही हम किसी भी प्यार के रिश्ते को कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे हम माँ से प्यार करते हैं तो उसे ममता कहते हैं। जैसे हम भाई बहन के प्यार की बात करते हैं तो एक विश्वास की बात आती है, और जब दोस्ती की बात करते हैं तो भरोसे की बात आती है। वैसे ही आप पति पत्नी या प्रेमिका के प्यार की बात करते हैं तो एक दूसरे पर एतबार करने की बात आती है। और कहते हैं ना, फिर इस प्यार के वजह से हमारी सोशल लाइफ में जो रिश्ते बनते हैं उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। चाचा चाची होता है, मामा मामी होता है, पति पत्नी होता है, और फूफा फूफी, या फिर दादा दादी, या फिर नाना और नानी। क्योंकि रिश्तों का नाम देना वो हमारी मजबूरी है। पर क्या आपको लगता है कि प्यार, इश्क और उसकी ये फीलिंग्स किसी भी नाम की मोहताज है? मुझे तो नहीं लगता। यही बात करेंगे हम, यानी कि मैं आरजे दिलबर सांसों की रूहानियत 2.0 पर। आज मैं दो लोगों की ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, जिनके इस प्यार भरे किस्से में उन्होंने तो ये कहा है, पर हमें भी लगता है कि इस प्यार का कोई नाम नहीं है, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, और इसे नाम देना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज पहली बार मैं इस कहानी का नाम दे रहा हूं, जिसमें कोई नाम न देने की बात है। कोई नाम न दो, ये कहानी है मित्तल और कनक की। मित्तल और कनक बचपन से लेकर आज तक, यानी युवानी की बात मैं नहीं कर रहा, पर आज वो 35 से 40 साल की उम्र में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। पर ये दोनों व्यक्तित्व, यानी कनक और मित्तल, इनकी कहानी में यही तो बात है कि प्यार में कोई रोड़ा नहीं, पर इसे नाम क्या दे वही बड़ी समस्या है। ब्रेक के बाद इस कहानी को आगे भी आप सुनेंगे और आपको लगेगा कि सच में प्यार कोई अलग सा एहसास है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

वो कहते हैं ना कि बचपन की दोस्ती बड़े होकर प्यार में बदलती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब बचपन से आप साथ में हो, एक दूसरे को इतना जानते हो, ट्रस्ट करते हो, फैमिलीज को भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो कहते हैं ना कि दो जिस्म पर एक जान वाली दोस्ती हो, तो सबको लगता है कि ये आगे जाके शादी कर फिर एक दूसरे के प्यार में ये पूरी जिंदगानी साथ में जी लेंगे। और मित्तल और कनक के लिए भी सारी दुनिया यही सोचती थी, घरवाले भी उनके लिए इत्मीनान से कोई रिश्ता ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल ये दोनों अपनी जो इश्क वाली फीलिंग्स है उसे बयां करेंगे और इस रिश्ते को कोई नाम देंगे। पर ये किसे पता था कि ये दोनों कुछ अलग ही सोचते थे। बात ये थी कि कॉलेज के सेकंड ईयर में थीम रखी गई थी पूरे सेलिब्रेशन की, प्यार, इश्क और

लव। जी हाँ दोस्तों, वर्ड तो सेम है पर वो कहते हैं ना फुर्रार से बोलना होता है, जहां पर जैनजी वाला वो स्वैग होता है तो आई लव यू यानी लव वर्ड सुटेबल होता है। कहीं पे शायराना कुछ माहौल बनाकर आप अपनी फीलिंग्स पेश करते हैं तो इश्क सही रहता है, और प्यार सिंपल जैसे है वैसे ही अपनी फीलिंग्स को आप बयां कर दे और फट से उसका जवाब मिल जाए तो उसे प्यार कहते हैं। ये मेरी डेफिनेशन है सही में, पर आपको भी अच्छी लगेगी। इसी बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कहानी पे ये सबको इंतजार था कि इस रिश्ते का कुछ नाम हो, पर कॉलेज के वो सेकंड ईयर में जब ये वर्ड्स वाली पूरी उनकी सेलिब्रेशन वीक चल रही थी तो बहुत सारे किस्से ऐसे उन्होंने देखे अपने दोस्तों के, उन्होंने एडमायर भी किया कि आप बयां करो। तभी कनक के दिल में भी एक छोटी सी हलचल होती है। उन्हें दोनों को ये फीलिंग्स का थोड़ा सा एहसास होता है कि क्या हम भी इस रिश्ते में बंधने के लिए वाकई क्या ओके है, या हम इस रिश्ते की जो डेफिनेशन है उसको संभाल पाएंगे। इसी सोच के साथ उस सुनहरी सुबह जब रोज डे सेलिब्रेशन हो रहा था कुछ हुआ था। यही बात मैं बताने वाला हूँ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालन।

कनक और मित्तल बचपन में जब खेलने जाते थे या फिर किसी पिकनिक और टूर पे जाते थे, इनके बीच बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। आपको लगा होगा कि किसी भी कहानी की शुरुआत तो इतनी डीप फीलिंग से होती है, जैसे कि मैं कहने वाला था कि ये सब कुछ शेयर करते थे, पर नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये हर वक्त छोटी से छोटी बात पर अपने ओपिनियन रखते थे, क्योंकि बचपन से यानी केजी से लेके कॉलेज तक की इनकी सारी पढ़ाई साथ में हुई थी और इनका रहना भी एक ही सोसाइटी में हुआ था। बाद में जब रीडेवलपमेंट हुआ तब भी ये दोनों सामने यानी पड़ोसी की तरह ही वहां पर बड़े हुए और रहे थे। इसलिए तो ये दोनों व्यक्तित्व आपस में झगड़ा करते हैं।

कहते थे। पर फिर आप गलत सोच रहे, रुकेगा, ये झगड़े वो नहीं थे जो आप सोच रहे, ये मीठी सी नोकझोंक हुआ करती थी अपनी राय रखने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। वो एक दूसरे के सामने कुछ भी चीज हो तो उसे खुलेआम बयां करते थे। इसीलिए तो कनक और मित्तल का ये रिश्ता कुछ अलग था। मैं हूं आरजे दिलवर और आप सुन रहे हैं रेडियो पालनपुर पर सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0। कनक और मित्तल दोनों इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे कि उन्हें लगता था कि वो कोई भी चीज एक दूसरे के सामने विरोध करके भी अगर पेश करेंगे तो भी दोनों पूरे डिस्कशन के बाद पर किसी न किसी एक निर्णय पर तो आएंगे ही। और यही बात तो सब लोगों को अच्छी लगती थी, टीचर्स हो, दोस्त हो और घर वालों, सबको लगता था कि इन दोनों के बीच जो भी चर्चा होती है उससे पूरे ग्रुप को फायदा होता है। ये दोनों चाहे जितने झगड़ ले पर एक दूसरे के लिए डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। किसी को कुछ हो गया, किसी का होमवर्क करना था, किसी के लिए कुछ लाना है, इन दोनों की चॉइसेस इन दोनों को पता होती थी। इतना ही नहीं, फैमिली मेंबर्स के बर्थडे, दोस्तों के बर्थडे और इनमें सारी चीजों के लिए क्या किसको कैसे पसंद है, जैसे कि लव बर्ड्स के लिए होता है वैसे सारी चीजें इन्हें पता थी। बस बात ये थी कि आए दिन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ अनबन हुआ करती थी। ऐसी ही नमकीन कहानी को आप भी सुनेंगे पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

लाइफ चेंज होती रहती है, जिंदगी के मायने बदलते रहते हैं। बस ऐसा ही हुआ। फिर कॉलेज लाइफ के बाद में दोनों की लाइफ की पटरी कुछ पैसे कमाने में लग गई, क्योंकि दोनों की लाइफ अब इंडिविजुअल पर अपना अस्तित्व बनाए हुए थी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। मित्तल की शादी तय हुई और फॉरेन की वो व्यक्ति के साथ जिसका पूरा साम्राज्य फॉरेन में, यानी ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस का एक बड़ा एम्पायर सेटल था उसकी फैमिली में, वहां पर हुई। और आप जानते हैं ना कि जहां पर फैमिली बिजनेस या फिर बिजनेस की रिलेशन की वजह से शादियां फिक्स होती है, वहां पर वो दूसरे व्यक्ति को जाकर सेटल होना ही पड़ता है। प्यार वैसे ही था, फोन पर बातें ही वैसे हो रही थी। आज भी अपनी लाइफ में बहुत सारे मुद्दों पर ये झगड़ लिया करते थे, अनबन रहती थी। लाइफ में सेटलमेंट जैसा एक तरीके से था, बस यही था कि शादी मित्तल की हो चुकी थी। कनक और मित्तल अपनी लाइफ में वैसे देखा जाए तो आगे निकल चुके थे। कुछ साल बीतते हैं, बातचीत में ये पता चलता रहता है कि कनक तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, यानी कि शादी वाली वो चीज को अपनाने के लिए। दूसरी तरफ मित्तल, जिनकी लाइफ में भी अब बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसा बंदा सोचा है, जैसा बंदा सोचता है वैसा ही लाइफ में हो, ऐसा कौन मानता है? क्योंकि सब लोगों को पता है कि हम जो सोचते हैं उसके आसपास 19-20 हो जाता है, पर लाइफ पूरी वैसी नहीं होती है। कनक अभी भी अपनी सीधी पटरी पे चला जा रहा है और दूसरी तरफ मित्तल की लाइफ में डिवोर्स वाली मोड आ जाती है। एक बच्चा है और उसके साथ में मित्तल वापस इंडिया सेटल होने की सोच को लेकर, रिटर्न होने का पूरा अपना मन बनाकर, बिना किसी फैमिली मेंबर्स को बताए वो प्लेन लैंड कर देते हैं। यानी कि अब कनक और मित्तल दोनों इसी जहां में, इसी हवा और फिजा में लाइफ जीने के लिए रेडी है। पर थोड़े बहुत से बदलाव हो चुके हैं। क्या अब भी वही फीलिंग्स, वही प्यार वाली चीजें जो उनके बीच में है, वो दोनों को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं? इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

क्या नाम दें हम इस रिश्ते का, इस प्यार को क्या नाम दिया जा सकता है? क्या हम ये सोचते हैं कि हीर राँझा, क्या हम ये सोचते हैं कि लैला मजनू, क्या हम ये सोचते हैं कि राधा कृष्ण, सुदामा जी नरसिंह मेहता का वो भक्ति का भाव, वो समर्पण का भाव मीराबाई का, क्या हम इसे दोस्ती का प्यार कहें? मुझे लगता है कि हम इसे किसी भी तरह, किसी भी लफ्जों में इसे नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। इस रिश्ते का कोई नाम ना ही दे वही वाजिब है, फिर भी ये प्यार तो है। दोनों ने ये मुकम्मल जहां उसे पा लिया था कि जहां पर रिश्ते नहीं चाहिए, जहां पर आंखों से बात होती है, लफ्जों से बयां होती है, दिल की धड़कनें बिना कान से भी सुनाई देती है। हम कहते

कहना कि प्यार यही है जिसमें झगड़ा हो 100 बार पर उस झगड़े के बाद में मनाना या फिर कोई भी चीज के लिए मैंने ये किया तूने ये किया अब मैं करूं या तू कर ये वाली बात नहीं आनी चाहिए। इसी बात को लेकर तो मैं आज ये कहानी लेके आया था कि आज भी ये दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, इस प्यार का कोई नाम नहीं है, फिर भी दोनों के बीच ऐसा पक्का वाला रिश्ता है जो सुकून सी नींद देता है, सुकून सा दिन देता है, सुकून सी राहत देता है जिसके लिए हम तड़पते हैं। तो दोस्तों, इस जहां में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसे नाम देने की जरूरत नहीं है, वैसे रिश्तों को आपको और हमें समझना चाहिए। अपनी लाइफ में पूरा रिश्ता वैसा रख पाए ना रख पाए, पर कुछ समय के लिए तो ये बात होनी चाहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पहलनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़, आरजे दलबल के साथ सांसों की रुहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0।

वैसे तो देखा जाए, मित्तल ने ये बात कनक को बताई नहीं। ये आप सबको लगता है कि क्या प्यार में ये सही है, पर यही तो जानना है कि ये वाला प्यार जहां पर ट्रस्ट है, जहां पर एक दूसरे पे इत्मीनान कर बातचीत करने वाला रिश्ता है, और वहां पर भी कुछ बातें अगर कुछ समय तक नहीं बताई जाती तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। आप सुन रहे हैं 2.0 सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज, आरजे दिलबर के साथ, रेडियो पालनपुर पर। तो दोस्तों, फिर ये होता है कि अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, कैसी लाइफ जा रही है उसके बारे में बातचीत होती है, पर दोनों ही एक ही शहर में हैं, ये बात साझा नहीं करते हैं। और इसी बीच एक मॉल में मुलाकात हो जाती है दोनों की। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर भी कोई सवाल आता नहीं कि क्यों मुझे नहीं बताया, क्यों ऐसा हुआ। दोनों की मुलाकात एक दिन मॉल में हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ पल के लिए आंखें नम हो जाती है। अब सोच रहे थे कि झगड़ा हुआ होगा, अनबन हुई होगी, क्यों तुमने नहीं बताया, ये सवाल पूछे गए होंगे, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो रिश्ता अलग से है, यही वाले प्यार के रंग की हम बात करने वाले हैं जहां पर अंडरस्टैंडिंग है। दोनों को लगा कि जो भी हुआ सही हुआ, वक्त हो चुका था कि जब एक दूसरे को पता चल जाए कि हम दोनों यहीं पर हैं। पर फिर भी दोनों ने और कुछ बातें की और कहा कि चलो इत्मीनान से छुट्टी के दिन बात करते हैं। वैसा बोल के दोनों अपनी शॉपिंग करके चले गए। ये भरोसा, ये दोस्ती, ये एक ट्रस्ट था कि मेरे रिश्ते में अगर मेरे पार्टनर ने कुछ मुझे नहीं बताया तो कुछ सही होगा ना, क्यों हम गलत के बारे में सोचे, और गलत ही होगा या फिर गलत ही चीजें इसके पीछे होगी, ये वाले डाउट ही तो रिश्तों को कमजोर बनाते हैं। और यही बात सीखने की है, जिस प्यार का कोई नाम नहीं है, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, वहां पर इतनी अगर अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट होते हैं तो फिर हमारी लाइफ में इश्यू क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ढूंढ कर निकालना है कि भी लाइफ सीधी क्यों जा रही है, खुशियां इतनी सारी क्यों है। हमें थोड़ा सा मिर्च लगाना होता है, पर मिर्च खाने में अच्छा लगता है, मिर्च रिश्तों में अगर लग जाता है तो फिर बहुत दर्द होता है। और वो रिश्ते जहां पर मिर्च लगती है वहां पर कोई दवाई काम नहीं आती। यही तो सीखना है कनक और मित्तल के इस रिश्ते से। छुट्टी के दिन फोन पर बात होती है, सारी चीजें शेयर की जाती है कि बस मुझे लगा था कि मुझे किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी एक वक्त से पहले मुझे ये चीजें शेयर नहीं करनी थी, इसलिए मैंने नहीं की है। और इसी बात पर फिर दूसरी बार फेस टू फेस मिलकर बातें करने की वो ठान लेते हैं। फिर क्या हुआ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

फिर वो शाम आई जब कनक मित्तल वो छोटा सा बच्चा सारे लोग वो ही कॉफी की शॉप में मिलते हैं जहां पर कैफेचिनो वाली कॉफी बढ़िया से मिलती है जो दोनों को अच्छी लगती है। और वो जो छोटा सा बच्चा इस लाइफ में वो भी इसका साक्षी बनने वाला था वो खुद वहां पर कैफेचिनो वाली आइसक्रीम खा रहा है। बातें यहां पर आके रुकती है, सारी जिंदगी की बातें शेयर होती है। वापिस उसी मोड़ पर एक बार वही प्रपोजल आता है कनक की ओर से, क्या अब लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए या फिर हम उस जो कॉलेज लाइफ में बात अधूरी छोड़ गए थे उसे वापिस आगे बढ़ाए, क्या हम शादी करके साथ में रह सकते हैं, क्या तुम्हें प्यार आज भी हमारे बीच जो था उस पर यकीन है। मित्तल का जवाब यही है कि प्यार था, है और रहेगा, पर न जाने क्यों मैंने उस रूप में उस फॉर्मेट में तुम्हें कभी देखा ही नहीं है और मैं इसीलिए ये डर महसूस कर कर पूरी लाइफ जीने की सोचने की बात वो जहन में आ जाए ऐसा क्यों सोचो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्यार है ये सच्चा है, इस पे ट्रस्ट है, इस पे इत्मीनान है मुझे, इस पे मुझे लगता है कि रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी रीज़न के बिना मैं बात कर सकूं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखने मिलती हैं, वहाँ पर नहीं होती है। और जैसे मैंने कोई चीज़ नहीं बताई तो

वो सवाल सामने से नहीं आए वो इसी रिश्ते में मुमकिन है। वरना तो अगर हम वापिस वही रिश्तों में बन जाएंगे और इस प्यार का कोई नाम दे देंगे तो फिर क्या होगा। और मुझे भी पता नहीं कि मैं कितनी लाइफ को आगे कहां तक खींच कर ले जाने के लायक हूं। और इसीलिए इस छोटे बच्चे की सोच को लेकर भी, इसकी लाइफ को लेकर भी मेरा यही सोचना है कि उसे तुम्हारा प्यार भी बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी ऐसे शक या फिर जिम्मेदारी के मिले कि जहां पर वो इत्मीनान से जब भी अपनी लाइफ में मुश्किली हो तो वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी पुकार सके। बातों को सुनकर लगता है कि किताबी बातें हैं, पर वो मेरे लफ्जों का थोड़ा सा जादू है, अदरवाइज ये सच्ची कहानी है। फिर क्या हुआ, दोनों की लाइफ कैसे जा रही है, आज क्या है इस रिश्ते का नाम, वही मैं बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।

0: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
0: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
0: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
0: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
0: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
0: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर।

0: कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है।
5: अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
6: जूस छोड़।

0: यार ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
1: आजा खेलते हैं।
0: अच्छा देख सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
2: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
0: अच्छा वो क्या?
2: एक तो ये जलता हुआ स्टोव और दूसरा
0: हाँ
3: दूसरा क्या?
2: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
1: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना।

0: काम बहुत कठिन था। ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ। आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी 1/3 राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग शुरू करो।

0: मुझे यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अरे

0: Gedein canggo, kembali. Babi belang cakap kami.
1: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
2: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
2: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
1: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज सौ बाळ मित्रों नु स्वागत करू छू बाळ सभामां।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

मक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

हाय नमस्कार। गानों की इस महफिल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जो भी गाने सुनेंगे वो कुमार शानू जी ने गाए हुए हैं। आपको तो पता ही है कि कुमार शानू जी हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गायक हैं। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका नाम दरअसल कुमार शानू जी नहीं है, बल्कि उनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उनके पिताजी भी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार शानू जी को गायकी और तबला वादन सिखाया था। आपको पता है कि उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है इस गाने की वजह से, और वो गाना है सोचेंगे तुम्हें प्यार। ये गाना दीवाना फिल्म से है, जिसका संगीत निर्देशक नदीम श्रवण ने किया है। तो अगर इस गाने की बात ही हो रही है तो चलो इस गाने को सुन भी लेते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार।

गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। सानू जी ने गायकी में अपना खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखा हुआ है, इसीलिए आज भी उनके चाहने वाले उनके गानों को सुनकर अपना दिल थाम लेते हैं। उनको पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिया था, उन्होंने ही सानू जी को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया था। 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए कुमार सानू ने एक गीत भी गाया था। क्या आपको पता है कि एक दिन में 28 यानी कि 28 गाने रिकॉर्ड करवाने वाले वह एकमात्र गायक है? हाँ, ऐसा शायद कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। कुमार सानू का आज के दौर में संगीत के बारे में कहना है कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम हो जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। और अगर जहाँ पे मेलोडी गानों की बातें हो रही है, वहाँ पे ये गाना सुनना तो बनता है। ये गाना है साजन फिल्म का, मेरा दिल भी कितना पागल है। आई नो मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं, पर सानू जी तो बेहद ही अच्छे सिंगर है, तो चलो ये गाना सुन लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस गाने के लिए भी उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चलो सुनते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है।

कुमार शानू जी मानते हैं कि आज के संगीत में मेलोडी सुरताल कहीं गुम हो रहे हैं और उसकी जगह शोर ले रहा है। यदि यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार प्रतीत नहीं होते। उनकी चाहत हमेशा रही कि काश उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ कोई गाना गाया होता। बहुत समय से वह बंगाली फिल्मों में सक्रिय है और हिंदी फिल्मों में कम। 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और देश के चौथे सबसे सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी हुए। फिल्म राउडी राठौर में गीत चमक छल्लो छल छबीली के साथ दोबारा वापसी की। फिर सन 2014 में रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हैशा फिल्म में गीत दर्द करारा गाया। और जैसे कि आपको पता है, ये फिल्म का ये सॉन्ग बेहद ही मस्त, जैसा लगता नहीं कि पुराने गाने और पुराना माहौल जैसे फिर से जिंदा हो गया। तो ये गाना तो सुनना बनता है नहीं, तो चलो सुन लेते हैं दम लगा के हैशा फिल्म से दर्द करारा सॉन्ग, जिसको गाया है कुमार शानू जी ने।

कुमार शानू को अधिकतर 1919 के दशक की फिल्मों में दिए गए पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। इसमें फिल्म जुर्म कैसे भूल सकते हैं, जिसका गाना आज भी कोई भी मैरिज पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो या तो प्राइवेट वैलेंटाइन पार्टी हो, इसमें ज़रूर बजाया जाता है। कुछ ऐसे गाने नहीं होते जो भले ही पुराने हो जाए लेकिन दिल के बेहद ही करीब रहते हैं। उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही एक गाना है जुर्म फिल्म से, जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना जब आया था तब से लेकर अब तक की जनरेशन को बेहद ही पसंदीदा है। आप ये गाना हर बार सुनते होंगे। जब ये गाना बजता है तो दिल में कुछ कुछ ज़रूर होता है। तो चलो हम आगे यही सॉन्ग आपको सुना देते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। इस सॉन्ग के बाद हम वापस से यही मिलेंगे। रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

आगे आपने ये सॉन्ग सुना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग से अगर तुम अपने दिल की बात शेयर किसी से ना कर सको तो सिर्फ ये सॉन्ग बजा देना। आई नो कि सामने वाला इंसान आपकी बात ज़रूर समझ जाएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग से उनको बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन उनको सुपरस्टार बना दिया आशिकी फिल्म के गानों ने। इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं। और अब यहाँ पे अगर आशिकी मूवी की बात हो रही है, आशिकी मूवी से जब कुमार शानू जी सुपरस्टार बन गए तो उसी मूवी का एक गाना तो बनता है ना। चलो तो आशिकी मूवी का ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन। आई नो कि मैं उस ज़माने से नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जब ये गाना आया होगा ना, तब लोग अपने दिल की बात इसी गाने से जाहिर करते होंगे, क्योंकि इस मूवी में इतने सारे गाने हैं और सारे के सारे आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूर होंगे। तो चलो आज हम ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन, और इसके बाद वापस से मिलेंगे रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि के साथ।

वैसे तो कुमार शानू जी ने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं, जैसे कि आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अनु मलिक। लेकिन वो नदीम श्रवण है जिनके साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें सर्वाधिक कामयाबी प्राप्त हुई। हाँ, मैंने आपको जो भी सॉन्ग अभी सुनाए, अब तेरे बिन सोचेंगे तुम्हें प्यार, मेरा दिल भी कितना पागल है, इस तीनों सॉन्ग में संगीत निर्देशक किया है नदीम श्रवण जी ने। क्या आपको ये पता है कि 2000 में आई हुई हम दिल दे चुके सनम मूवी में गाए हुए एक सॉन्ग की वजह से उनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मिला था, और इस मूवी का वो सॉन्ग था आंखों की गुस्ताखिया। हाँ, वही गुस्ताखिया जहाँ पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय आंखों से बड़ी ही गुस्ताखिया कर रहे हैं। अगर इस गाने की बात हो रही है तो आई नो कि आपको ये गाना सुनने का बहुत ही दिल हो रहा होगा। कोई नहीं, रेडियो पे आपके लिए ये सॉन्ग जरूर बजेगा। इस सॉन्ग के बाद हम फिर से मिलेंगे ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

कुमार शानू जी ने वैसे तो अपने संगीत करियर में बहुत सारे गाने गाए, सोनी म्यूजिक के लिए, टी सीरीज के लिए, टिप्स और सारेगामा के लिए, लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वापस से मैं कह देती हूँ कि आई नो कि मैं सुर की इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर ये गाना कभी भी बजता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और दौर में पहुंच गए हैं, लाइक सपनों की दुनिया में कहीं खो गए हैं। 1942 में लव स्टोरी मूवी आई थी और इस मूवी में संगीत निर्देशक किया था आर डी बर्मन जी ने। हाँ, और जिसमें ये सॉन्ग

लिखा था जावेद अख्तर जी ने, इसको गाया था कुमार शानू जी ने। जब भी ये गाना बजता है ना तो आज भी यंग जनरेशन एकदम झूम जाती है, और कभी भी अगर उनको प्यार होता है ना तो ये गाना ज़रूर सुनते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और इस गाने को सुनने के बाद यार पता नहीं कि कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ इस गाने के बारे में, तो आई नो कि आपको भी ये गाना सुनना होगा, तो चलो सुन ही लेते हैं ये गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

अब मेरा जाने का समय हो चुका है। हाँ, समय तो हो चुका है और आज तो कुंवर शानू जी के सॉन्ग सुनकर मेरा दिल झूम रहा है। दिल धड़कन धड़कन पता है ना, धड़कन एकदम जोरों से धड़कने लगी है। अगर धड़कन की बात हो रही है तो फिल्म धड़कन का ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा ना। तुम दिल के धड़कन में, हाँ हाँ हाँ यही सॉन्ग। ये सॉन्ग भी गाया है कुमार शानू जी ने। अब मैं जा ही रही हूँ तो आपको ये सॉन्ग तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि फिल्म धड़कन से अगर ये सॉन्ग नहीं सुना कुमार शानू जी का तो क्या ही सुना। चलो इस सॉन्ग को सुन लो। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी, ओनली ऑन रेडियो कोलंबो 90.4 FM पर। चलो मस्त रहना, व्यस्त रहना और सुनते रहना रेडियो।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

है मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।